0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 02085748410
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

लिख विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: चौदहवीं का चांद हो या फताब. व्हाट अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ रफीसा. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: आर यू लिसनिंग? Leica Radio is now available across Derbyshire on DAB.

पर फ्रॉम द मूवी कलाकार एंड द वोकल्स ऑफ साधना सरगमा. अच्छा, दिस सॉन्ग वॉज ऑल्सो संग बाय किशोरदा विच इज अ बिग बिग बिग हिट. बट ये वाला गाना साधना सरगम की आवाज में काफी टाइम से नहीं प्ले किया गया था लाइका गोल पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये वाला गाना भी प्ले किया जाए. वेल इट्स सच अ ब्यूटिफुल रोमांटिक नंबर. अच्छा, दिस मूवी वॉज ऑफकोर्स नॉट अ हिट, बट दिस सॉन्ग वॉज अ सुपर हिट. दिस मूवी स्टार्ड श्रीदेवी एंड कुणाल गोस्वामी. ना कुणाल गोस्वामी इज मनोज कुमार साहब.

0: वो है जरा कफा कफा इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड लता मंगेशकर. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.

0: बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं. दिस अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरिहरन. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी खामोशी, सलमान खान एंड मनीषा कोइराला. दिस वॉज डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली. आई थिंक दिस मूवी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड दिस वॉज शॉट इन गोवा एंड स्पेशली दिस सॉन्ग वॉज शॉट इन अ लाइट हाउस. And if you ever go to Goa, Goa is a beautiful place. And I would definitely recommend ki barishon mein Goa jana to banta hi hai. Ek aur achhi khabar, Kishore Kumar fans, get ready for Crazy for Kishore, a special musical night featuring Joy, Indrani, Sanjay with Hinal and the 515 band. It takes place on Friday 19 June at the Prince Regent Hotel, Chigwell, Essex. Tickets available at eventbrite.co.uk or call on 0208-514-5400. Exclusive radio partner, Leica Gold Radio.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जाने मन तुम कमाल करते हो इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा फ्रॉम द मूवी त्रिशूल. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर एंड वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय बाय. रवि जी इज गोना बी नेक्स्ट गिविंग यू कंपनी एंड प्लेइंग सम ग्रेट म्यूजिक.
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर. दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: Good morning. स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। भाई स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम मनोरंजन एंड द प्रेजेंटर इज रवि शर्मा, आपका जाना पहचाना, आपका दोस्त पुराना। ये पुराना कहते हुए भाई आप हिचकिचाते क्यों हैं शर्मा जी? मान लीजिए आप पुराने हो चुके हैं। अब वो कोई बात जोड़ दीजिए उसके साथ कि वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, नया नौ दिन पुराना सो दिन। बुधवार वर्ष 2026 के जून महीने की 17 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई 10:05 हो चुके हैं ब्रिटिश घड़ियों में। तो साहब जुड़ जाइए लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों के साथ, बातों के साथ और हंसी के ठहाकों के साथ अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक। शुरुआत किस चीज से करें, शायरी से करें? आज किसी की डायरी मिली नहीं, हाथ लग जाती तो शायरी से करते। लेकिन साहब आज शुरुआत करते हैं आंकड़ों से, गिनती से, और गिनती किस चीज की? शर्मा जी उम्र की करते हैं।
1: Like a Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is the freshest sound across the Midlands. We are Like a Radio.
0: तो 16 बरस की मैं 17 बरस का दोनों मिलाकर के हम बनते हैं 33 के, 33 के, बड़ी बढ़िया उम्र है, बस इसको आगे मत सरकने देना। 16 की मैं 17 का।

0: तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बड़ा अजीब सवाल है भाई। किसी ने किया भी होगा तो कहते हैं किया थोड़ी जाता है प्यार, प्यार तो हो जाता है, होता होता कुछ नहीं है भाई, सब करते हैं मानते नहीं है। अपने आप हो गया, लो अपने आप होता है कभी? आपने भोजन किया, कहते मैंने खाया नहीं, बस अपने आप खाया गया। सब काम किए जाते हैं, करते हो पर स्वीकार नहीं करना चाहते। कई लोग तो बड़ी भारी बड़ी बड़ी गलतियां करके कहते हैं मुझसे हो गई, और साहब इतने गंभीर अपराध करके अदालत में खड़े होके कहते हैं मुझ पे शैतान सवार हो गया था। यानी शैतान, उसको फांसी दो, उसको सजा दो, उसको कैद करो, मैं तो मासूम हूं, मैं तो इनोसेंट हूं। देखिए साहब, सच्ची बताऊं, वैसे अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं तो शरीफ आदमी हूं, किसी से पूछ लो, मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपनी पॉकेट में रखता हूं। जहां कोई कुछ मतलब अक्सर लड़कियां इल्जाम लगाती हैं, कोई कुछ कहे तो मैं फौरन सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देता हूं। और भाई साहब शराफत की क्या गारंटी दूं, अच्छे कैरेक्टर की वजह से ही मुझे जेल से 6 महीने पहले रिहाई मिल गई थी। बोले अच्छा चाल चलन है। ये हमारे दोस्तों, एक जमाना था भाइयों के, हम लोग ना एक अपना ग्रुप बना रखा था, एंटरटेन करते थे, तो जेल में हम प्रोग्राम करने जाया करते थे, और जेल में बड़े गंभीर अपराधियों से मुलाकात होती, बात होती थी। शो करने से पहले वो आके ऑडियंस में बैठते थे, उनको सबको लाया जाता था। और उन दिनों भाई वो जेलर और जो जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, वो मित्र बन गए थे, दोस्त बन गए थे हमारे, अक्सर हमें प्रोग्राम मिल जाया करते थे। तो साहब उन दिनों कुछ कैदियों को नज़दीक से जानने देखने सुनने का मौका मिला था। अनुभव है साहब, इकट्ठे कर रखे हैं, बांटते चलेंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल तो लेट्स सी हाउ मच मनी वी कैन गेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK फॉर £1।
1: SBI UK मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज का रेट बता रहे हैं, £1 के बदले वो दे रहे हैं 126.35 इंडियन रुपीज, 126.35 रुपए का रेट चल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जून के महीने में एक खास ऑफर, वो कहते हैं सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए £75 वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर £1,000, ये ध्यान रखिएगा, और 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। Like a radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Football, फुफा जी नहीं, फीफा, फीफा भाई। फुटबॉल में क्या बताएं साहब, कल के मैचेस में तो कहते हैं ज्यादातर ड्रॉ हुए। मैच में जो ड्रॉ होना ना, ये बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे भाई हम पैसे खर्चे टिकट ले, देखें भाग दौड़ तो होती है लेकिन कोई नतीजा ना निकले, थोड़ी सी निराशा होती है। पर भाई कल ऐसा ही हुआ। आज बता दें मुकाबले जो हो रहे हैं, अर्जेंटीना वर्सेज अल्जीरिया, और भाई ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन, और पुर्तगाल वर्सेस कोंगो, और इंग्लैंड वर्सेस क्रोशिया, ये सारे मैच जो हैं होने वाले हैं। और साहब जो भी नतीजे आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क। इसके साथ ही भाई जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी ओर से भी ये ऑफर है कि आप यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मैंशन लाइका। ये नाम याद रखिएगा, फायदेमंद नाम है लाइका। मेंशन लाइका एंड गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस फ्रॉम रैक लॉ।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Night in London. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे थे भाई ये गीत फिल्म नाइट इन लंदन से। उस दौर में बहुत सारी फिल्में विदेशों में बनती थी और लोग सिनेमा हॉल में बैठ करके ही विदेश यात्रा किया करते थे भाई सीन्स के माध्यम से। तो अब ये गीत हमें ले आया है इस मोड पर जहां आज के दिन के साथ जुड़ने वाले समाचारों पर हमें नजर डालनी है। एकदम यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो बर्नहम को एक बिग रोल गवर्नमेंट में ऑफर कर रहे हैं, ये अभी अभी खबर आ रही है, लेकिन क्या रोल है वो उसकी व्याख्या अभी नहीं हुई है। और साहब वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड तैयार है, आज मुकाबले में उतरेगी टीम, तो हम जोड़े रखेंगे आपको स्कोर से। इसके अलावा भाई खेलों की खबरें खूब सारी हैं और क्या क्या है आज के प्रमुख समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। अरे उससे पहले एक और बात बतानी भाई, खबरें बता दें लेकिन उससे पहले एक कंपटीशन है प्रोग्राम में, वही कल भी किया था हमने। अरे वो भाई है ना कि एक फिल्म जो है वो दिखाई जा रही है और लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिवली धर्मा प्रोडक्शंस के साथ। गुजराती फिल्म है जिंदगी वंस मोर, जिंदगी जिंदगी नहीं ये गुजराती प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेरिया विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड। लेकिन भाई हमारे पास हैं दो टिकट देने के लिए, ऑफर करने के लिए इस प्रोग्राम में, और भाई वो शो जो हो रहा है जिसमें आप जाएंगे देखने के लिए ये दो टिकट्स जीतकर, ये स्पेशल शो है सिर्फ इन्वाइटीज के लिए, आमंत्रित लोगों के लिए, खास खास लोगों के लिए। स्क्रीनिंग हो रही है कहाँ पर, कोर्ट हाउस होटल में, होटल का अपना सिनेमा हॉल है होटल के अंदर, बड़ा बढ़िया, तो आप बड़ी प्राइवेट स्क्रीनिंग सी महसूस करेंगे। ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के नज़दीक है और बहुत सारी फिल्मों के प्रीमियर वहाँ हमने अटेंड किए हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, सितारों से भी मुलाकात हुई है वहाँ। भाई स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस दिस थर्सडे 18 जून शाम 6 बजे, और इसमें आप अगर आप जाना चाहते हैं तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारा कंपटीशन नंबर जिसमें आप भाई एंट्री कर सकते हैं 07424232323, बताने की जरूरत है क्या, आप तो रट चुके हैं ना ये नंबर। आप 07424232323 पर आप जवाब दे सकते हैं। सवाल क्या है, कुछ भी नहीं है, जवाब ही देना है खाली, जवाब ये है कि आपको जिंदगी लिखना है, JINDAGI, जिंदगी। तो साहब ये शब्द आपको लिखना है और फिर अपना नाम और फोन नंबर लिख करके हमारी कंपटीशन लाइन पर भेजना है। इसी प्रोग्राम में मैं नतीजा बताऊंगा, दो टिकट्स किसको जाएंगे। और कल शायद नुसरत जी ने जीते थे दो टिकट्स, उन्होंने भाई फूल भेजे, फूल, अरे यार वो फूल बनाने वाले फूल, मतलब असली फूल नहीं, वही जो फूलों की पिक्चर भेजी, थैंक यू नुसरत। आजकल लोग चाय के कप भेजते हैं, पकौड़े भेजते हैं, मिठाई भेजते हैं, सब के सब चित्र में वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ऊपर वाला देखेगा आपको ना, तरसा तरसा करके दिखाना जरूरी है क्या। थैंक यू नुसरत, जरूर जाना आप फिल्म देखने के लिए। और आज देखते हैं कौन जीतता भाई, 07424232323 कॉम्पिटिशन की लाइन ओपन है, भेजना शुरू कीजिए एंट्रीज। जिंदगी लिखना, नाम और फोन नंबर लिखना है।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा, लाइक अ रेडियो।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। आज के प्रमुख समाचारों में भाई पहले तो खेलों से ही शुरू हो रही हैं खबरें। संजय मांजरेकर ये क्रिकेट के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और भाई कमेंटेटर भी होते हैं, एक्सपर्ट भी हैं क्रिकेट के, कहते हैं अगर मैं कोच होता तो वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में शामिल नहीं करता। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे इंटरनेशनल चल रहा है भाई इस समय मैच, और वैभव उसमें खेल रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी उम्र के इस खिलाड़ी को बहुत कवरेज मिल रही है भाई, वो बड़े बड़े काम भी कर रहा है। लेकिन भारत के फॉर्मर क्रिकेटर और संजय मांजरेकर ने एक पोस्ट में कहा है कि इंडिया ए के कोच या वो मैनेजर होते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करते। ये भाई ए टीमें खेल रही हैं, पूरी मैंस टीम नहीं। इसके अलावा और खबरें, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल केवल गलत काम के लिए नहीं होता है। क्यों पाबंदी लगाई जा रही है भारत में इस पार्टी पर? टेलीग्राम पर टेम्परेरी प्रतिबंध लगाने के सरकारी फैसले का कॉकरोच पार्टी ने विरोध किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ये बनी है भाई पार्टी और बड़ी चर्चित है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पहले केजरीवाल ने की ये अपील। दोनों की मुलाकात होने वाली है भाई आज ही। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम को मीटिंग होनी है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी से अपील की है कि बात कीजिए, सीना तान के छाती ठोक करके बात कीजिए, ट्रंप को बता दीजिए। उन्होंने ट्रंप ने मिसाइल दाग करके हमारे 3 जो सिटीजन्स को मार डाला, उनको भारत के 140 करोड़ लोगों का स्पष्ट संदेश दीजिए कि भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं इस बात से। आपको बता दें भाई, 3 भारतीय नाविक या नेवल जो पावर है भारत की, वेल भारत के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेवी के रिटायर्ड लोग या नेवी से जुड़े लोग जो है सेना से रिटायर्ड होके मर्चेंट नेवी में या दूसरे देशों के जहाजों में काम करते हैं, उनमें से 3 लोग थे जो मारे गए हैं वहां। तो उन तीनों के लिए भारत के लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक तो हैं वो, चाहे वो किसी भी देश के लिए या किसी भी शिप पर काम कर रहे हों। ओमान की खाड़ी में एमटी सेटेबोला शिप पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया की डेड बॉडीज भारत पहुंच गई हैं। मस्कट में भारतीय एम्बेसी ने यह जानकारी दी है। करीब 1 सप्ताह पहले ओमान की खाड़ी में एमटी सेटेबोला शिप पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नेवल लोगों की जो मौत हुई थी। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया था। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। ये भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में एक खबर जो है चर्चित है कि वहां चढ़ावे में यानी पैसे जो लोग मत्था टेक करके चढ़ाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी की खबरें फैल रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। श्रद्धालुओं के पैसे भी आप चुरा लें, श्रद्धालु आते हैं उनका जो भी चढ़ावा अपनी जेब में भर ले, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आपको बता दें भाई, ये बात अभी कथित तौर पर है, कोई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में चंदा विवाद की जांच के लिए 3 मेंबरों की एक SIT का गठन कर दिया है जो जांच करेगी। फुटबॉल कप चल रहा, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जे के एक मुकाबले में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ लगातार 3 गोल दाग दिए भाई। हैट्रिक, वर्ल्ड कप में मेसी की ये पहली हैट्रिक है। इसके साथ ही मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मेसी ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप में 16 गोल किए हैं। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा की बराबरी कर ली है। वर्ल्ड कप में गोल करने के लिहाज से मेसी ने ब्राजील के रोनाल्डो, जिन्होंने 15 गोल कर रखे, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना ने 2022 का फुटबॉल विश्व कप जीता था। मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने US इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल दिया है। अब इसका जो ऑथेंटिक नाम है वो US पैसिफिक कमांड कर दिया गया है, यानी अब हिंद प्रशांत कमांड से हिंद शब्द हटा दिया गया है और इसका पुराना नाम वापस बहाल कर दिया गया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने ईरान के साथ शुरुआती समझौते के प्रावधानों के बारे में कहा है कि अगर ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में यानी वर्ल्ड की माली जो व्यवस्था है उसमें उसकी वापसी का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ओबामा के दौर में ईरान के साथ हुई डील बुरी तरह नाकाम रही थी और अब ये समझौता उस डील से बिल्कुल विपरीत है, इससे ईरान को फायदा होगा जैसे ही ये समझौता लागू होता है। G7 फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने कई नेताओं से मुलाकात की है। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और भाई इस दौरान ब्रिटेन, कनाडा, कीनिया, मिस्र, जापान और UAE समेत कई देशों के नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए संगीत की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से एक और संदेश है भाई। वी हैव टीम्ड अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच। और ये कब? आज ही तो खुल रही है। यस, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन फिनर। और वहां से भाई हमारे जो है साथी प्रेजेंटर्स कॉन्टेक्ट भी करेंगे, जानकारी देंगे। द फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल हैव द चांस टू क्लेम अ गोल्डन टिकेट ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस देयर। और वो कहते हैं कि स्पेंड £1 एंड रिसीव £50 वर्थ ऑफ फूड आइटम्स। टीएनसी अप्लाई।

0: na.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Like our radio.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
4: और बहनों भाइयों, साउथ ऑल ट्रेवल का वो संदेश फिर याद दिला देता हूँ आपको। कहते हैं कि छुट्टियों पर जाइए और हमारी सेवाओं का फायदा उठाइए। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई बहुत भरोसेमंद ट्रेवल एक्सपर्ट हैं साउथ ऑल ट्रेवल वाले, और वो ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका। फोन नंबर है 0208 5748410।

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के इस मोड़ पर, जहां भाई हम चिंतन से आपका स्वागत करते हैं। और चिंतन में आज हम भाई किसी से आपकी भेंट करवाना चाहते हैं। चिंतन में आप जानते हैं कि थॉट फॉर द डे यानी विचार होता है, और आज एक विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अन्ना लेट मी सी इफ दे आर अवेलेबल ऑन द फोन। हेलो, प्रणाम, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ, आधा घंटा लगेगा। हेलो।
0: हाँ जी, आधा घंटा लगेगा। आपकी आवाज एयर पे जा रही है, मैंने सीधा आपको एयर पे ले लिया है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पारस बोल रहा हूँ, अभी गुरुजी आधे घंटे में आएंगे।
0: तो पारस जी, ऐसा है हमारे साथ तो समय निश्चित होता है। हाँ, 11 बजे का चिंतन, कोई बात नहीं, तो हम फिर ट्राई करेंगे। लेकिन आपकी, आप जानते हैं कि आपकी आवाज एयर पे जा रही है, रेडियो पर सब लोग सुन रहे हैं, पारस बोल रहे हैं। पारस जी कहते हैं, पारस के छुआने से जो लोहा होता है ना, वो सोना बन जाता है। आपकी लाइन जोड़कर हम सोचते थे कि हमें कुछ आध्यात्मिक विचार चिंतन में शामिल करने के लिए मिलेगा। इट्स ऑल राइट, गुरुजी से फिर बात कर लेंगे जब वो उपलब्ध होंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग पारस।
1: 11:30 to 12:30।
0: हैव ए नाइस डे। थैंक यू। तो भरो भाइयों, आप समझ गए होंगे, ये रेडियो की जिंदगी जो है ना, समय के साथ बंधी होती है। एग्जैक्ट टाइम पर हमें समाचार लेने होते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे प्रोग्राम शुरू करके खत्म करना होता है। तो ऐसे में ये निश्चित था, आज एक महान विभूति से आपकी हम भेंट कराना चाहते थे। हिज होलीनेस श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, भाई ये हिमालयन योगी हैं और मेडिटेशन के विषय में आज कुछ जानकारी देना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो उपलब्ध नहीं है। पर हमारे पास तो चिंतन बहुत सारे हैं, आइए आपके साथ एक चिंतन साझा करते हैं। ये भाई कुछ किताबों से जुटाए हुए और कुछ संतों के मुखारविंद से सुने हुए। कल हमारी भाई भेंट हुई कुछ संतों से, संत त्रिलोचन दास जी महाराज, उनसे मुलाकात हुई। और एक सौम यज्ञ चल रहा भाई, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं भारत से, और वो यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ किस लिए? मन की शांति के लिए। सोम का एक अर्थ भाई चंद्रमा होता है, लेकिन एक शीतलता भी होता है, शांत। आज जो हमारे चारों तरफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी और भाई स्ट्रेस, इस तरह की जो परेशानियां है ना, उनके लिए जो सोम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कितने लोग जुड़े हैं वहां का आयोजन देख करके भाई, एक एक व्यक्ति के प्रति हमारा मन श्रद्धा से भर गया। और ये सारी कृपा हुई संत शिरोमणि त्रिलोचन दास जी महाराज की कृपा से। तो साहब वहाँ गए, वहाँ देखा और महसूस किया कि एक आध्यात्मिक स्थल जो है, ये जो स्वामी नारायण मंदिर है वुडलेन में, वो इतना शानदार डेवलप हुआ है एक तीर्थ स्थान के रूप में कि वहाँ जाकर के ही मन को शांति मिलती है। फिर यज्ञ चल रहा हो तो क्या कहना भाई। संतों से और शास्त्रों से जो बात मिली, जिसको निचोड़ कह सकते हैं, हम चिंतन में शामिल कर सकते हैं आज। भाई पहले तो धन्यवाद दे जय पटेल, एक कोच ड्राइवर अपनी कोच लेकर के भाई कहीं पार्क करके खड़े थे, उनसे हमने रास्ता पूछा तो कहते हैं जी मंदिर जाना है, तो कहते बैठिए। अब भाई 3-4 लोगों को लेकर के, और उन्होंने अपनी कोच मंदिर की ओर घुमा दी, छोड़ के आए हैं। हमने कहा ये असर कैसे कि आप किसी आध्यात्मिक स्थल के आसपास भी होंगे ना, आपके मन पर असर पड़ेगा उसका। और साहब अगर आप किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, अगर आप किसी को मुस्कुराहट देने के लिए, हंसी खुशी देने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपका मन पहले खुश होता है। गुरुजी कहा करते थे 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है, 2 दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख हो। निचोड़, आप अगर दूसरों को दुख देंगे तो आपकी जिंदगी दुखों से भरी रहेगी, और एक बार आप खुशियां देना शुरू करेंगे, सुख देना शुरू करेंगे, तो साहब आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी।

कल हर व्यक्ति वहां पर भाई स्वामीनारायण मंदिर में सोम यज्ञ के मध्य में संतों वाला बाना पहने हुए थे, संत स्वरूप। ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति का मन भी और तन भी संतों की

0: सब बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें हमारी ओर से। लाइका रेडियो नेटवर्क पर हम आपके आभारी हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK इस समय का रेट बता रहे हैं, हम नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 126.35 रुपीज, 126 रुपए और 35 जो है पैसे का रेट चल रहा है भारतीय मुद्रा में। तो साहब इस तरह से सिर्फ यही नहीं, कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रही है जून महीने के दौरान, और वो है कि अगर आप भारत पैसा भेजते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ऐप के माध्यम से या उनकी ब्रांच में जाकर के, तो साहब 75 पाउंड्स वाउचर जीतने का चांस है इफ यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। इसके अलावा अगर 2000 पाउंड या उससे ज्यादा की रकम भेजते हैं तो देर इज अ चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब रैकलो द्वारा स्पॉन्सर्स फुटबॉल फीफा के मैचेस की विषय में जानकारी दें भाई। कल एक घटना घटी है कि वो मेसी ने हैट्रिक स्कोर की है और भाई उनकी बड़ी चर्चा है, लेकिन कल के जो रिजल्ट्स हैं उनमें अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया और 3 गोल मेसी ने करके जो है भाई सबसे अधिक गोल करने का वर्ल्ड कप में जो है रिकॉर्ड की बराबरी की है। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को हराया 3-1 से, और आज के जो मैच हैं उनकी बारे में भी जानकारी और स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ। साथ में ये भी बता दें भाई कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं रैकलो वाले, वो कहते हैं कि अगर आप लाइका शब्द मेंशन करके, लाइका का नाम लेकर के हमें फोन करते हो तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस के अधिकारी हैं आप। यू कैन गेट फ्री लीगल एडवाइस फॉर 15 मिनट्स फ्रॉम रैकलो इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Laika Radio.
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
5: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Milton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
12: Uncle tame pehla thi aavaj chho.
13: Aava etle keva.
11: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
13: Maro baap banvani koshish kare tu બુદ્ધિ વેચી આવ્યો છે તું?
14: અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે

0: गीत संगीत की महफिल तो सजी रहती है साहब, लेकिन चिंतन में हम आध्यात्मिक विचार लेकर आते हैं भानु भाई, और कभी कभी हम किसी ऐसी विभूति से आपकी भेंट करवाते हैं कि भाई वो आशीर्वाद और प्रसाद रूप में कोई संदेश दे जाते हैं। आज हमने कोशिश की थी 11 बजे उन्हें मिलवाने की, तो उस समय वो उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन अब यूं समझिए जैसे गंगा स्वयं चल करके भाई पुण्य देने के लिए और पवित्र बनाने के लिए धरती पर उतरी थी, ऐसे ही संत महात्माओं का आगमन होता है ब्रिटेन में और हमारे रेडियो के माध्यम से हम उनके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं हिज होलीनेस श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, और ये हिमालयन योगी हैं, मेडिटेशन समर्पण मेडिटेशन के संस्थापक हैं, और भाई इनका जो काम है, जो मुकाम है, जो स्थान है इनका अध्यात्म में वो बहुत ऊंचा है। लेट्स फाइंड आउट इफ वी कैन गेट ब्लेसिंग्स एंड प्रसाद फ्रॉम हिम। परमादरणीय स्वामी जी प्रणाम करता हूं।
1: नमस्कार नमस्कार
0: स्वामी जी, मेरे पास ये मैसेज है कि आप ये जो हिमालयन समर्पण मेडिटेशन है वहां से आपने अनुभव अर्जित किया है, तो ये क्या प्रकृति से प्राप्त हुआ मेडिटेशन का जो ज्ञान है अनुभव है, या कोई किसी व्यक्ति विशेष से आपकी भेंट हुई हिमालय में कंदराओं में पर्वतों पर?
1: नहीं, वास्तव में क्या रहता है, जैसे आपकी स्थिति बनती है ना, जैसे आपके जीवन में गुरु का आगमन होता है।
0: जी,
1: वैसे मैं कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर था
0: जी,
1: हाँ, उसके बाद मैं एमकॉम तक पढ़ा हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा लगता था एमकॉम करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है।
0: हाँ,
1: तो नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैंने ना एक बेचैनी सी लगती थी। उसके बाद में कलकत्ते में नदी के किनारे बैठता था, तो नदी का पानी देख करके ऐसा विचार करता था कि नदी का पानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के समुद्र में विलीन होगा, तब इसका अस्तित्व नदी नहीं रहेगा समुद्र होगा। वैसे मेरे जीवन में भी कब परमात्मा मय होगा कि मेरा अस्तित्व शरीर नहीं रहेगा, ये इच्छा करता था, तब जाके मेरे जीवन में गुरु आए।
0: गुरु का प्राप्त होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो गुरु का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान प्राप्त होना। तो स्वामी जी, जो आपके पास धन है, जो संपदा है, ये समर्पण मेडिटेशन के माध्यम से आप लोगों में बांट रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आपके फॉलोअर्स हैं, तो थोड़ा सा प्रसाद हमें हमारे श्रोताओं को दे दीजिए, बता दीजिए क्या है समर्पण मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन से आप अभिप्राय क्या है, ध्यान समाधि, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए संक्षिप्त से समय में।
1: नहीं, पहली बात तो ना, सब अध्यात्म का एक ही सार है, सब अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है, आपका शरीर भाव कम हो जाए और आपका आत्मभाव वृद्धिगत हो जाए, बस
0: जी,
1: वही
0: जी।
1: तो मेडिटेशन में वही होता है, आपका शरीर भाव कम हो जाता है, आपका आत्मभाव बढ़ जाता है, और दूसरा मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्या है, मनुष्य जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब शरीर से संबंधित है। जब आपका शरीर भाव कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली समस्या भी कम हो जाती है, ऐसा अनुभव मेरे को नहीं, लाखों साधकों का है।
0: जी जी, तो आप उसको कैसे बांटते हैं आम लोगों से, क्योंकि दुनिया में तो आप देखिए कि ये शायद मेडिटेशन की कमी है, भीतर झांकने की ही कमजोरी है कि बाहर युद्ध चल रहे हैं, चारों तरफ जंग का माहौल है, विवाद हैं, झगड़े हैं, लड़ाई है, बैर विरोध है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, चिंताएं हैं, फिक्र हैं, तो स्वामी जी इसका कैसे इसका जो है हल ढूंढा जाए, बताया जाए।
1: ये बताओ, ऐसा समय कब नहीं था, आप पीछे भी देखो ना, पीछे भी कभी भी ऐसा समय नहीं है कि एकदम शांतिपूर्ण विश्व है, कभी भी नहीं है। एक बार ना मैं कनाडा जाने को निकला था,
0: तो
1: मुंबई के एयरपोर्ट पे एक पुलिस ऑफिसर खूब दौड़ते दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते आया, मेरे को बोलता स्वामी आप क्या बोलते हो, निर्विचार रहो निर्विचार रहो, कितना आतंकवाद फैल रहा है, कितने बम फूट रहे हैं, कितने विस्फोट हो रहे हैं, और आप बोलते हो निर्विचार रहो निर्विचार रहो, कैसे रहे। मैंने उसको बोला देख मेरा चित्त इधर है, तो मेरे को दिख रहा है कि मैं 30 साल पहले हिमालय से आया, आज 72 कंट्रीज तक पहुंच चुका हूँ, ये मेरे को दिख रहा है, और हजारों लाखों लोग ध्यान सीख रहे हैं, ये मेरे को दिख रहा है, तेरे को ये दिख रहा है कि बम फूट रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। तो जीवन में कभी भी प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण, जब जब अच्छी घटना घटती है तब तक बुरी घटना घटती है, प्रश्न तुम्हारा चित्त कहाँ पे, तुम्हारा चित्त अगर अच्छी जगह तुम अच्छा ग्रहण करोगे, बुरी जगह बुरा ग्रहण करोगे। तो कहने का अर्थ, अगर ध्यान करते हैं ना तो हमको हमारा चित्त अच्छा हो जाता है, और उसके बाद में हमारा चित्त बुरी जगह जाता ही नहीं, तो ये सब हो रहा है, हमारा कोई चित्त उसके अंदर नहीं, हम तो मजे में शिविर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, चल ही रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो स्वामी जी, यहाँ कोई आपका शिविर लंदन में लग रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, हम लोगों से कहेंगे कि वो वहां जाकर के ये प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करें।
1: अभी मेरा ऑक्सफोर्ड में हो रहा है 18 तारीख को, लेकिन पता नहीं वो बाहर के लोगों को अलाउ कर दे कि नहीं। ऑक्सफोर्ड में है, उसके बाद में आयरलैंड जा रहा हूँ। आयरलैंड में 24 तारीख को संसद में शिविर, वहाँ पे बड़े शिविर से 24 तारीख को भी है, काफी आयरलैंड में बहुत है।
0: शिविर से मतलब अभिप्राय है, कैंप लगा रहे हैं। तो भाइयों आप सुन रहे हैं स्वामी जी जो महाराज श्री के पास समय भी सीमित होता है, और हमारे रेडियो पर भी कार्यक्रम में हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, लेकिन इनसे संपर्क किया जाए, इनके कैंप अटेंड किए जाएं तो बहुत लाभ हो सकता है। महाराज श्री कोई संपर्क सूत्र, कोई फोन नंबर या कोई ठिकाना कहीं जहां आपसे संपर्क किया जा सके?
1: वो सब मैं आपको भेजता हूँ।
0: ओके ठीक है, तो मैं अनाउंस कर दूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, बहन भाइयों, हिज हॉलीनेस श्री शिव कृपानंद स्वामी जी हिमालयन योगी हैं, और ये संस्थापक हैं समर्पण मेडिटेशन के, और मेडिटेशन के माध्यम से कितने ही कष्ट, कितने ही दुख, परेशानियां, चिंताएं, फिक्र जो है उनको मिटाने का जो मार्ग दर्शन देते हैं। तो हम सभी श्रोताओं की ओर से महाराज जी आपका धन्यवाद करूं। इससे पहले कोई एक संदेश संक्षिप्त रूप में आप सब श्रोताओं को देना चाहें?
1: पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है।
0: ओ जी जी,
1: देखिए मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया।
0: हाँ।
1: वो शिविर खत्म हुआ 8 दिन बाद, तो उन्होंने पूछा स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियां हैं।
0: हाँ।
1: पद्धति है कि सांस के ऊपर चित्त रख के ध्यान करो, आपने उस पद्धति से भी ध्यान ही सिखाया। दूसरी पद्धति है त्राटक, आपने उस पद्धति से भी ध्यान ही सिखाया। तीसरी पद्धति है भस्त्रिका का प्राणायाम, आपने उस पद्धति से भी ध्यान ही सिखाया। आपने तो कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन हम 8 दिन रहे, 8 दिन में हमको जो अनुभूति हुई वो अनुभूति हम दूसरे को बांट नहीं सकते। तो उनको मैंने बोला महाराज साहब पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, पद्धति में एक शरीर को सिखा सकता है, एक शरीर से सीख सकता है, ये ध्यान का संस्कार है। वो ध्यान का संस्कार हिमालय के गुरु ने मुझे दिया और देकर के अधिकृत किया। अधिकृत जब अपन हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, अपने माध्यम से सब कार्य हो जाता है। वैसे मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा, मेरे माध्यम से हो गया, तो मेरे माध्यम से उन जैन मुनियों को भी मिला। तो कहने का मैं कुछ करता नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे सानिध्य में उनको वो अनुभूति हो जाती है।
0: क्या बात
1: है, हम बोलते हैं कि ये जो शरीर भाव है ना, ये आपका 45 दिन आप कम करो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, क्योंकि सब प्रॉब्लम संबंधित है आपके शरीर से।
0: क्या बात है भाई, बता दूं बहनों भाइयों, ये आध्यात्मिक संदेश जो है ये बहुत थोड़े समय में समझने में थोड़ा सा वो होता है, इस पर विचार करना, और ये अपने आप अनुभव होता है, एहसास होता है आपको, आप शरीर भाव से मुक्त होकर के और आत्म भाव में जब स्थित होते हैं। ये स्वामी जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे जरूर। मैं एक बार सबकी ओर से, श्रोताओं की ओर से, लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में, और अब अनुमति चाहता हूँ, आई विश के आप जो संपर्क सूत्र भेजेंगे मैं साझा कर सकूंगा लोगों के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और साहब ऐसी आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक संदेश, स्पिरिचुअल अनुभूति होती है भाई। ये मेडिटेशन जो है शरीर से शरीर को नहीं सिखाई जा सकती, ये तो भाई अनुभूति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप अपने भीतर उतरेंगे, शरीर भाव को समाप्त करके, मैं शरीर हूँ इसे हटा के, भाई बड़ा मुश्किल, मैं बताना चाहूँ कैसे बताऊँ, जो इतनी महान विभूति आकर के थोड़े से शब्दों में अपनी बात कह गए, आप इस पर विचार करना। शरीर भाव को समाप्त करके, मैं रवि शर्मा नहीं, मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, उसे हट करके शरीर से जब मैं सोचूंगा तब मेडिटेशन होगी। लौट आइए संगीत की दुनिया में।

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: करेंसी रेट्स नोट कीजिए भाई, एक पाउंड के बदले LemFi वाले दे रहे हैं भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में 126.77 रुपीस, पाकिस्तानी 373.27, श्रीलंकन रुपए 447.72, बांग्लादेशी टके 164.73 एंड अफगानी 84.69.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: The gold is sold at the rate of 103.95 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा?
6: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पांडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.

0: सरिता, मोनिका, सरिता किसको बुला रहे हैं आप? हेलो,
1: बुला रही। हाय रवि जी। रवि जी मैं हूँ यहाँ तारिक हलाल मीट की। आज नई ब्रांच खुली है रेनर्स लेन में, तो हम सब यही थे। बाली जी, आन बाली जी के साथ साथ रूबी, रजा, कैम सभी यहाँ पर हैं। अभी अभी बाली जी गए हैं क्योंकि उन्होंने 1 बजे शो करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत से लोग यहाँ आए, बहुत से लाइका गोल्ड सुनने वालों से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ के जो सीईओ हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने नई फ्रेंचाइज लिया है, सबसे बातचीत हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मीट स्टफ नहीं है, मीट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सा फ्रोजन स्टफ भी है, मसालाज हैं। एंड जो ऑफर लगाई थी इन्होंने आज की, 1 पाउंड की अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 50 पाउंड तक वर्थ की चीजें मिलेंगी। तो क्यों इतनी लंबी थी कि 100 के बाद भी लोग, थोड़े से लोग डिसअपॉइंट हुए कि ओ हमारा फर्स्ट 100 में नाम नहीं आया। और बहुत से पहले से ही 9 बजे से भी पहले से क्यू में खड़े थे और उन्होंने इस जो स्पेशल ऑफर थी इसका फायदा उठाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर आप आसपास के इलाके में रहते हैं और पहले कभी तारिक हलाल पे नहीं गए हैं, जो कि साउथ हैरो में भी ब्रांच है, यहाँ नजदीक नजदीक हैं और ब्रांचेस, लेकिन ये लोकेशन बहुत अच्छी है, रेनर्स लेन स्टेशन के बिल्कुल नेक्स्ट डोर है और बहुत बड़ी बहुत शानदार शॉप है। एंड यहाँ पर मीट के अलावा और भी बहुत सारा सामान है, तो आप आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और इनकी स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। सो रवि जी आप भी प्रोग्राम खत्म करके यहाँ आ सकते हैं।
0: नहीं, मैं नहीं आ सकता, आप जानते हैं क्यों नहीं आ सकता। ऐसा है सरिता जी, सरिता जी,
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको और हमारे क्लाइंट्स को। मैं मेरी कुछ व्यस्तता है, लेकिन रूबी हैं वहां पर, आप हैं, बाली भाई तो वहां से आ चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग वहां आ रहे हैं आप उनसे बातें करेंगी और लाइका रेडियो नेटवर्क,
1: बहुत सी बातें की हैं
0: लाइका रेडियो नेटवर्क के विषय में।
1: जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मीट ही नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सा सामान है, लाइक ऑयल है, मसाले हैं, फ्रोजन स्टफ है, और भी शॉपिंग की जा सकती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: अगर कोई मीट नहीं करता
0: तो। आप एक बार फिर से एड्रेस बता दीजिए लोगों के लिए और बता दीजिए ये इवेंट जो चल रहा है क्या है, तो फिर मैं आपसे जो है अनुमति लूंगा कार्यक्रम में।
1: एग्जैक्टली मुझे डोर नंबर नहीं पता है, लेकिन रेनर्स लेन जो स्टेशन है उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। तो पोस्टल एड्रेस क्या है, यहाँ के जो सीईओ है वो मेरे साथ है इस वक्त, तो आप बताएंगे कि एड्रेस क्या है।
2: The address is 297 Rainers Lane,
1: Rainers Lane,
2: HA5,
1: yeah,
2: 5EJ.
0: और पार्किंग का कैसा है वहाँ पर सरिता जी?
1: पार्किंग यहाँ बिल्कुल इजी है, यहाँ पर मीटर पार्किंग है और येलो लाइन में सिंगल येलो लाइन भी है, तो आराम से शॉपिंग करने के लिए यहाँ आ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं सभी स्पेशल ऑफर्स का भी।
0: थैंक यू वेरी मच सरिता जी, ऑल द बेस्ट टू द क्लाइंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू आवर स्टाफ मेंबर्स हु आर देयर। और बहन भाइयों जो आप सुन रहे हैं, तो वहां जाकर के सरिता जी से, रूबी, रजा से, बाली भाई तो आ चुके हैं, ये वहां थे अर्लियर, बट आप इनसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सरिता जी अगेन।
1: थैंक यू, बाय बाय।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: आवाज में कई फिल्मी गीत भी रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी की याद आ गई भाई, आज वो दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। और साहब आज ही जन्मदिन टेनिस प्लेयर लिएंड्रा पेस भाई, वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर होते थे, आजकल कहाँ हैं मालूम नहीं, लेकिन राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं। आज उनका भी जन्मदिन है, 17 जून 1942 में वो में थे। और अमृता राव फिल्म अभिनेत्री हैं भाई, उनका भी बर्थडे आज है। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी ओर से और हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं पाउंड का रेट। आज भाई पैसे भिजवाने हो अपनों को तो भारत में पैसे भिजवाने के लिए उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कीजिए। आज का रेट फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 126.35 इंडियन रुपीस। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भाई एक ऑफर और है कि इफ यू सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, then by there is a chance to win 75 pounds voucher every day. 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Iske alawa 1 gram gold coin bhi jeetne ka chance hai every week when sending over 2000 pounds. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Laika Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
3: 105 shows pura karya pachi, have Lester ma avi rahyu chhe, ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
4: Jay's Entertainment, line avi rahya chhe, sakhna re jo husband ji.
3: Leena Shah, ane Samir Shah saate, haasiyano full dose. 28 June, People Center, Lester ma, be shandar shows, bapore adi vage, ane sanje, saat vage. Tickets booking mate, call karo, Mr. B07860. 0280655 Mumbai Sandwich Station 0783483224 or eventbrite.co.uk. Sakina Rejo, Husband Ji.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इनटू chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai set.

0: Collection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
1: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. A pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jyan madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September na Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Gadbad gotala chhe. Problems mota chhe. Pan badu alright chhe.
3: Mechene back to back three movies joy li thi.
2: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas. In the movie badu alright chhe.
3: Betar kalakmal pacho avi jase ne pachi badu alright thai jase.
2: In cinemas on 12th of June. For more info visit Bakrania Media's Instagram handle.
4: Evu lage chhe ke picture chalche.
5: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी.
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
5: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
6: दिल तो टूट भी गया
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
0: Lemfi means quicker and safe way to send money.
8: Lemfi means low transaction fees and great exchange rates.
0: Lemfi means £10 sign up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
8: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with Lemfi. Download the LEMFI mobile app today.
9: Lemfi is registered by the FCA.
10: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
11: Artist of the Week is saptah ke kalakar ka naam hai हरी हरन. फादर्स डे आ रहा है ना 21 तारीख को और भाई हरी हरन के गीतों में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं. ये गीत सुनिए, इसमें भाव है कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप हम अपने पिता में, अपनी माँ में, अपने पेरेंट्स में कैसे देख सकते हैं.
12: है, मगर फिर भी अनजाने हैं.
11: आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरी हरन.

0: और सॉन्ग हरिहरन की आवाज भाई हटके है। हम इनका नाम लिया करते थे ए हरिहरन, और मैं ढूंढ रहा था कि एक इसको रिप्रेजेंट करता है भाई। ए हरिहरन पूरा नाम है इनका, अनंत सुब्रमणी हरिहरन। ए हरिहरन अनंत सुब्रमणी हरिहरन, 3 अप्रैल 1955 में इनका जन्म हुआ था। यकीन नहीं आता 71 के हो गए, पर आवाज में दम खम भाई बरकरार है। रियाज है बहुत लंबा और बहुत सुरीले गायक कलाकार हैं, और आप जानते हैं कि 4 जुलाई को इनका प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं और भी बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हैं। इस सप्ताह के कलाकार हैं ए हरिहरन, यानी अनंत सुब्रमणी हरिहरन।
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: शर्मा जी बड़े गंभीर गीत सुनवा रहे हैं आज बुधवार, इसका आपको ख्याल ही नहीं है। नहीं, कुछ चटपटा मसाला कुछ ऐसा होना चाहिए ना, कोई गीत प्यार करने वालों के नाम। नहीं, प्यार करने वालों के नाम नहीं, प्यार में मरने वालों के नाम।

अरे प्यार और जंग में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो पहले प्यार करते हैं, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, फिर शादी करते हैं, और शादी के बाद तो जंग ही होती है ना। नहीं देखो, वो एक वो प्रेमी बता रहा था, कहता एक जमाना था मैं बोलता था, मेरी प्रेमिका सुनती थी, मुझे बहुत सुनती थी, सुनने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल। कहते फिर हमारी शादी हो गई, पत्नी बोलने लगी मैं सुनने लगा। बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा आजकल तो बच्चे भी हो गए हैं आपके दो, अब कौन बोलता है कौन सुनता है। कहते हैं आजकल हम दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं।

0: बस करो बस करो, इश्क की बातें बंद करो, क्रिकेट की बातें शुरू करो। भाई आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कमल प्रभाकर जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं और एसेक्स के लिए खेल चुके हैं, इंग्लैंड के लिए भाई वो जाना माना प्रतिष्ठित नाम है कमल प्रभाकर, और वर्ल्ड कप विमेंस आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की भाई रिपोर्ट वो करते हैं, इस समय हमारे साथ हैं। हेलो कमल।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Aur lijiye sahab, ab judte hain.
3: Ye hai
4: Like a Radio.
1: Women's Cricket Updates, presented by Kamal Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: Very good afternoon to you, Kamal.
5: Very good afternoon, Ravi ji. All the women are asking, where is Ravi Sharma ji not come to the match?
0: चल झूठे।
5: एनीवे रवि जी, वी गॉट ए ग्रेट गेम हियर, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, और बांग्लादेश ने पहला बैटिंग की, क्या शानदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने किया कि दे गॉट देम फॉर 77/8 इन 20 ओवर्स बांग्लादेश,
0: और 77
5: हांजी 77/8
0: एंड
5: रिप्लाई ऑस्ट्रेलिया का 21 फॉर नो लॉस इन 3 ओवर।
0: ये लगता है ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाएगा,
5: ये जाने लग रहा है उधर। और फिर उसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है इंडिया का नेदरलैंड्स के साथ, वो भी इसके बाद स्टार्ट होगा 2:30, तो उसके लिए अभी टीम वार्म अप हो रही है।
0: उसमें क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी रहेगा?
5: उधर तो मुझे इंडिया का ही लग रहा है, ऑल्दो नेदरलैंड्स गेव अ गुड गेम टू इंग्लैंड द अदर डे, बट आई थिंक इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और तीसरा गेम है रवि जी, साउथ अफ्रीका टेकिंग पाकिस्तान, ये जो है आज का बहुत बड़ा मैच है आउट ऑफ द टू वेरी गुड ब्रिलियंट साइड्स।
0: तो ये साउथ अफ्रीका पाकिस्तान शाम को है ना, कितने बजे है?
5: हाँ जी वो 18:30।
0: ओके, तो हम नतीजों के लिए आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे और आप क्रिकेट की जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कमल, एंड आई बिलीव यू हैव बीन कनेक्टेड टू अदर प्रोग्राम्स एज वेल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, लॉट ऑफ क्रिकेट। और अब भाई और भी क्रिकेट आ रही है यहाँ यूके में, भारत की टीम आ रही है, तो आपसे हमारा संपर्क बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच
5: जी रवि जी, पर आप भी कोई गेम में आना जरूर, देखें कि विमेन क्रिकेट कितना इंप्रूव हो गया और इतना स्किलफुल हो गया, तो इट विल बी लवली टू हैव यू।
0: भाई देखो बात ये है, आगे तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं तो विमेन क्रिकेट ही देखता हूँ। अगर क्रिकेट में जाता हूँ तो मैं विमेन ही देखता हूँ, चाहे वो चीयर गर्ल्स ही देखता रहूं।
5: That's it, Ravi ji, keep up with the good work. Thank you so much.
0: All the best. Thank you very much.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: This is Leica Radio.
6: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: अरे ओ चमिया, अरे कुछ नाच वाच हमका भी दिखाई दे।
7: नहीं नहीं नाचूंगी।
0: कैसे नहीं नाचेगी, है एडवांस दिया है। जब तक तेरे पांव चलेंगे, तेरे यार की सांसें चलेंगी। सुन लिया?

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथ हॉल ट्रेवल का संदेश भाई, मैं नाचूंगी कह करके गई है, क्यों नहीं नाचेंगी भाई, और नहीं तो पैसे वापस करो हमारे, ठीक है ना। साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, आप छुट्टियों पर घूम करके आइए और उनकी जो सेवाएं हैं उनका फायदा उठाइए। मेक दिस समर मेमोरेबल, यादगार बनाइए सफर को, साउथ हॉल ट्रेवल के साथ जाइए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स एंड एटोल प्रोटेक्शन बाई ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स और विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। साउथ हॉल ट्रेवल का नंबर है 02085 7484107.

0: मोहब्बत की दास्तान तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: ये है लाइका गोल्ड

0: जून का महीना तो है पर लगता नहीं है जून का महीना। कहाँ है पसीना, कहाँ है गर्मी, थोड़ी बहुत होती है फिर ठंड आ जाती है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। मनोरंजन विद रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: रेट्स हम बता देते हैं भाई, लेमफाई के एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में 126.68 रुपीस, पाकिस्तानी 372.94, श्रीलंकन 446.77, बांग्लादेशी टके 164.59 और अफगानी 84.65।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Gold. Sona. सराफा बाजार में सोने का भाव इस समय चल रहा है 103.93 पाउंड्स पर ग्राम।
1: ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, वाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड लेस्टर और कॉल 0116-266-4278। लाइक अ रेडियो।
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
6: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
7: Maa, dulhan ke liye makeup.
5: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 0208574-8410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
14: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट्स?
7: Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
14: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
15: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org. Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
1: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: और लीजिए साहब, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले भाई वीरेंद्र चौधरी जी, आपकी नई एल्बम के रिलीज होने पर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। महादेव पोनाहारी सफल हो और भाई बहुत सारे लोगों को जो है आध्यात्मिक शांति पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखे हैं, पर मैं अभी वो बता दूं कि कॉम्पिटिशन में आज विनर कौन है। हमने कहा था कि जिंदगी लिख के भेजो और अपना नाम और फोन नंबर लिखो, तो बहुत सारे लोगों ने भेजा और उनमें जो विनर हैं उनका नाम मैं बताने लगा हूं। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, बात यह कहना चाहता हूं कि ये दवा और मरहम पट्टियां हमारे साथ रहने दो, ये दवा और मरहम पट्टियां हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में प्रेमिका का बाप मिल जाए। भाई दर्द में हम हर हाल में होंगे, उनकी गली में नहीं होंगे तो अस्पताल में होंगे।

शब्बीर कुमार जी की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने कूली फिल्म वगैरह वगैरह सारी फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने गाए थे। अमिताभ बच्चन जी के लिए भी गाना गाया था, मतलब ही वॉज डूइंग क्वाइट वेल इन एवरी एस्पेक्ट, बट सडनली मशीनरी थोड़ी स्लो हो गई एंड एंट्री ऑफ कुमार सानू, उदित नारायण, ये सब सिकंदर आ गए, तो फिर प्रॉब्लम हो गया था। सो उन्होंने जब गुजारिश की तो केसी बोकाड़े जी ने रीडअप करा के ये गाना उनसे गवा दिया, एंड सुदेश भोसले जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट, लेकिन केसी बोकाड़े जी ने उनको वादा किया था कि मैं आपको दूसरे गाने भी मैं ज़रूर गवाऊंगा, आप कहें तो हम वापस आपका गाना डाल दें। उन्होंने कहा नहीं, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू अपसेट शब्बीर कुमार आइदर। सो इन्होंने रिश्ता निभाया, एंड द कूलेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री, एकदम साइलेंट बट डेडली, एंड दैट इज सुदेश भोसले जी। इतने टैलेंटेड कलाकार, लेकिन ऑलवेज रिमेनिंग वेरी काम एंड कूल, सबको हंसाते रहते हैं और अपने आप भी हंसते रहते हैं। ऐसे इंसान को जानना बहुत अच्छा लगता है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अलॉन्ग विद जॉनी लीवर साहब। काफ़ी नाम है मेरे पास, लेकिन उनमें से टॉप नाम पे ही इन दोनों का नाम आता है। सो ये कहानी मुझे तो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था जब मैंने कहा कि सुदेश जी आपकी लाइफ बन सकती थी इस गाने से, लेकिन बोलते तकदीर का खेल होता है। उसमें अमिताभ बच्चन जी का वो कूली वाला, आई मीन हम वाला गाना जो था, जुम्मा चुम्मा दे दे, वहाँ से इनको काफ़ी फेम मिली। अब मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन। एंड कल बड़ा मज़ा आया मुझे, घर पे मैंने एक वीडियो बनाया जैमिन का, क्योंकि समर चल रहा है और ऑफकोर्स आम का रस वो तो बहुत ही प्यारा लगता है इस सीज़न में। सो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया कल। स्पेशली वॉन्ट टू थैंक सीता फॉर दैट, फॉर हेल्पिंग मी आउट, एंड क्रुणाल फॉर हैविंग एडिटेड एंड ऑल दैट, एंड फुल बैकिंग फ्रॉम अलका शाह, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू जैमिन हु हैव स्पॉन्सर्ड दिस शो ऑफ माइन, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद देम एंड आई होप दे आर हैप्पी विद अस एज वेल। एंड आगे जाते हुए सेकेंड आवर में मैं ऐसा एक ट्रिब्यूट करने वाला हूँ जिसको मैंने 3 महीना इसके ऊपर मेहनत की है। 3 महीने के बाद मैंने पूरी स्टडी की इस इंसान की। ये इंसान इतना टैलेंटेड था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबको पता था कि हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं से, कोई वेस्ट से या जापान से हो या मिडल ईस्ट से हो, कहीं ना कहीं से गाना उठा के इन्होंने उसमें से दूसरा गाना बनाया, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स। लेकिन एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने कभी कोई कॉपी नहीं की और ओरिजिनल गाने बनाए, लेकिन मिजाजी थे, इनका मिजाज बहुत ख़राब था। ही वॉज सच अ डिसिप्लिनेरियन कि उनको कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशंस के सामने, अगर कोई म्यूजिशन का इंस्ट्रूमेंट ट्यून में नहीं होता था तो गुस्सा करते थे। उनको लाउड सिंगिंग पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने काफ़ी सिंगरों के अलग अलग नाम भी डाले हुए थे। इनको नौशाद का म्यूजिक इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने सशादर मुखर्जी को रिफ्यूज कर दिया फिल्म के लिए, फिल्म के म्यूजिक के लिए, बिकॉज दे वर सेइंग कि हमारे टर्म्स पे आपको काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे टर्म्स पे काम करूंगा। जहां संगीत की बात आती है, दिलीप कुमार साहब के साथ इन्होंने झगड़ा मोल लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको नहीं बता, एक डायरेक्टर आपको बताता है कि हाथ, दायां हाथ आपको ऊपर करना है, तो मैं वहां जाके शूटिंग में आपको दखल नहीं देता कि आपको बायां हाथ ऊपर करना चाहिए या डायलॉग ऐसा बोलना चाहिए। अगर मैं आपके काम में दखल नहीं देता हूं, आप मेरे काम में क्यों दखल दे रहे हो। सो दिलीप कुमार साहब के साथ भी इनकी बहस हो गई। दूसरा आई वुड से लता जी बहुत डरती थी इनसे गाना गाने के टाइम पे, क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रिक्ट इन एवरी वे। बहुत सारे लोग, और एक बार मदन मोहन जी ने

0: इनका गाना कॉपी कर लिया। अभी मदन मोहन जी की रेपुटेशन देखो, इज सच अ वंडरफुल कंपोजर, लेकिन उन्होंने इनका गाना लिया तो वो गुस्सा हो गए और एक बार उन्होंने एक पार्टी तो नहीं थी, आई थिंक ही वॉज वो कहाँ पे उनको कभी मिले थे इन अ पार्टी तो नहीं थी, इट वॉज अ गेट टुगेदर या कोई मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने उनको बोल डाला कि आजकल तो परछाइयाँ भी घूमने फिरने लग गई है। इन्होंने हॉट टेम्पर्ड जो थे वो, उन्होंने एक कॉन्सर्ट था, हाँ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में वो उन्होंने मदन मोहन को देख लिया तो उनके पास जाके बोला, क्योंकि इन्होंने कॉपी किया था उनका गाना, बोले आजकल तो परछाइयाँ भी घूमने फिरने लग गई है। लेकिन मदन मोहन जी ने क्या जवाब दिया वो सेकेंड आवर में हम ये ट्रिब्यूट करेंगे और ट्रिब्यूट में हम आपको सब कुछ बताएंगे। विकिपीडिया में काफ़ी गलतियां हैं इनके बारे में, बोला गया है इज अ कंटेंशियस पर्सन, ही वॉज नेवर कंटेंशियस, इनकी वजह थी वो जब गुस्सा करते थे इनकी वजह थी, वो जानकर ऐसे ही पंगा नहीं लेते थे। सो ऐसे इंसान के उनके बड़े बेटे के साथ मैंने बात की जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, तो उनसे बात जब हुई तो उन्होंने मुझे सब कुछ करेक्ट करके बताया। विकिपीडिया में लिखा हुआ है उनकी एक बेटी लेकिन दो बेटियां थी, वो भी गलत है विकिपीडिया में, बोला कंटेंशियस पर्सन थे। कंटेंशियस मतलब बहुत गंदा वर्ड है वो किसी के बारे में, बट आई गेट ऑफेंडेड जब किसी के बारे में गलत चीज़ बोली जाती है, एंड आई ऑब्जेक्टेड टू इट, मैंने कहा ही वॉज नॉट कंटेंशियस। हम इनके बारे में बात करेंगे सेकेंड आवर में, जुड़े रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.35 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
1: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
11: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
12: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
13: खुद से भी ज्यादा.
11: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
13: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
11: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
14: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
15: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Madan Mohan, kya composition. It's one of the greatest. And like Vijay Godori said, it's kind of a signature tune of Anisa Nasir ji's show whenever she is on radio. And I love this song myself. Kya composition.
1: Refreshing Asian hits across the Laika Radio Network.
0: ये गाना उषा खन्ना जी ने जो तीन वर्जन्स में बनाया, इट्स ऑलवेज एन एवरग्रीन वन. तीन वर्जन में से द फास्टेस्ट वर्जन इज बाय रफी साहब. आप तो ऐसे न थे 1980, हेमलता जी ने गाया और कौन, मनहर उदास. दिस इज रफी साहब.

एक अलग ही अंदाज से उन्होंने नूर जहां को गवाया फिल्म दोस्त में, 1944 की फिल्म। उसमें डायरेक्टर थे जो ऑफ कोर्स जिन्होंने शादी की थी नूर जहां जी के साथ, और नूर जहां जी के जो हस्बैंड थे उनके साथ ये फिल्म इन्होंने की थी, और उनका नाम था शौकत हुसैन रिजवी जो नूर जहां जी के हस्बैंड थे। 9 गाने, कोई मेल सॉन्ग नहीं था फिल्म दोस्त में, 9 गाने इन्होंने कंपोज करके नूर जहां जी को गवाए। ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस, नो कॉपीज फ्रॉम एनीवेयर। दिस मैन हैड अ रेप्यूटेशन, सज्जाद हुसैन। आज की तारीख में इनको मिस किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी गाने बनाए वो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर झुक के बोलता है कि कहीं पे आपको इसकी किसी की कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस बैठ के बनाए थे, इतने मुश्किल। और लता जी के वन ऑफ द फेवरेट, बिसाइड मदन मोहन ही वॉज ऑल्सो अ फेवरेट ऑफ लता जी एंड एज अ कंपोजर। अब सज्जाद हुसैन के बारे में मैं बात करता हूँ। He was born on 15th of June 1917 in a village called Sitamau, or that was Mandsaur district in Madhya Pradesh. And he passed away at the age of 78 on 21st of July 1995 in Mahim. Mahim ek bada pyara area hai Mumbai ka. And inke pitaji Muhammad Amir Khan, Muhammad Amir Khan ne unko sitar bajana sikhaya. He taught him how to play sitar. Now the enthusiastic Sajjad, he learned to play another 20 instruments. Usme se mujhe to 15 instruments mujhe malum hai. He learned and mastered playing violin. He learned veena, jaltarang, flute, piano, banjo, accordion, Hawaiian or Spanish guitars, harmonium, सितार तो मैंने कहा, क्लैरिनेट, हार्प, मैंडोलिन, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने मास्टर कर लिए। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड अ वेरी नॉलेजेबल मैन अबाउट म्यूजिक। बट इनका प्रॉब्लम पता क्या था? ही वॉज वेरी टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल यानी कि डिसिप्लिनेरियन। इनको अच्छा नहीं लगता था एनीबडी डूइंग लाउड सिंगिंग। लाउड सिंगिंग ही डिड नॉट लाइक, और मजाक भी करते थे। और विकिपीडिया में अगर देखो तो वो लोग बोलते हैं कि इनका इंसल्ट कर दिया, इन्होंने किशोर कुमार का इंसल्ट किया। ही डिड इंसल्ट हिम। ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे का मजाक तो उड़ाते ही हैं। इन्होंने किशोर कुमार को कह दिया शोर कुमार, क्योंकि बहुत नॉइजी सिंगर है। एंड देन इनको तलत महमूद को कह दिया गलत महमूद। ऐसे ऐसे कमेंट्स वो पास करते थे आउट ऑफ यू कैन से जोकिंगली, लेकिन लोग सीरियसली ले लेते थे। ही क्रिटिसाइज्ड नौशाद्स म्यूजिक। ही नेवर लाइक्ड लाउड सिंगिंग लाइक आई सेड, एंड ही इंसिस्टेड ऑन ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू बी परफेक्टली ट्यून्ड। ये डिसिप्लिन बहुत था इनमें। अगर कोई म्यूजिशियन आया और उसका इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं होता था, ही यूज्ड टू गेट एंग्री। अभी इन्होंने हलचल फिल्म की थी के आसिफ के साथ 1951 में। अब वो फिल्म के बाद दूसरी बार इनका अनबन हो गया के आसिफ के साथ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ। और फिल्म कौन सी थी? मुगले आजम 1960 की। तब इनकी उम्र थी आई थिंक ही वॉज 43 ईयर्स ओल्ड। और इनकी अनबन हो गई के आसिफ के साथ बिकॉज इनके ख्यालात चेंज होते थे। उन्होंने कहा कि म्यूजिकली मेरे ख्यालात जो हैं वो मैं चेंज नहीं करूंगा। के आसिफ ने कहा आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग। और इन डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने फिल्म छोड़ दी।

एंड जायज था इनका गुस्सा. इन्होंने कहा कि आई विल नेवर वर्क विद नूरजहां अगेन. और इन्होंने कभी नहीं काम किया उसके बाद, क्योंकि उनकी मेहनत जो थी वो शौकत हुसैन रिजवी जी ने, उनके हस्बैंड ने पूरा क्रेडिट दे दिया नूरजहां को. वो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, फिल्म थी दोस्त 1944 की. लेकिन इनको बड़ा गुस्सा आया. अभी नूरजहां मैडम जी ने उनके हस्बैंड को भी डांटा और कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड गो एंड अपोलोजाइज टू हिम. लेकिन इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया. अब शुरुआत करते हैं 1937 से. इनका जन्म हुआ 1917 में. 20 साल की उम्र में सज्जाद हुसैन डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक एज अ फिल्म स्कोर कंपोजर. सो वो चले गए बॉम्बे. बॉम्बे वो नगरी, द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन, विद हिज एल्डर ब्रदर निसार हुसैन. इनका पहली नौकरी एट सोराब मोदी की मिनरवा मूवी टोन में एट 30 रुपीज अ मंथ. एंड लेटर ही मूव टू वाडिया मूवी टोन. क्यों? क्योंकि वहां पे 60 रुपया मिल रहा था, तो वो वहां चले गए टू वाडिया मूवी टोन फॉर 60 रुपीज अ मंथ. For the next few years, he worked as an assistant to composers Mir Saheb and Rafiq Ghaznani, and then as a contract instrument player for Shaukat Hussain Rizvi. Wohi Shaukat Hussain Rizvi, jo inke husband, Madam Noor Jahan ke. 1940 mein inki umr thi 23 saal ki. Sajjad was introduced to a composer, Mir Allah Bakhsh. मालूम है मीर अल्लाह बख्श कौन? ऑफ कोर्स आपको मालूम है, द फादर ऑफ मीना कुमारी. या एंड देन मीर अल्लाह बख्श वाज वेरी इंप्रेस्ड विद सज्जाद्स मैंडोलिन स्किल्स. वो जैसे मैंडोलिन बजाते थे. एंड ही एम्प्लॉयड हिम एज एन असिस्टेंट. लेटर सज्जाद बिकेम असिस्टेंट टू म्यूजिक डायरेक्टर हनुमान प्रसाद, वेर ही कंपोज्ड टू सॉन्ग्स फॉर द फिल्म गाली. फिल्म का टाइटल था गाली, 1944 की. उम्र थी इनकी 26 साल की. और हनुमान प्रसाद जी ने कहा, चलो दो गाने तुम कंपोज करो, मैं देखता हूँ कैसे कंपोज करते हो आप, एंड आई विल एनकरेज यू टू डू दैट. उन्होंने दो गाने कंपोज किए फिल्म गाली में. उम्र थी 26 साल की. और ये लड़का जो 26 साल का नौजवान 21 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग लिया हुआ एंड परफेक्ट कंपोजर, ही कंपोज्ड टू सॉन्ग्स विच वॉज आग लगे सावन में और अब आजा दिल ना लगे, बोथ संग बाय निर्मला देवी. नाउ एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने फिल्म दोस्त की, दैट वॉज द फर्स्ट वन, जहां पे डायरेक्टर कौन थे? शौकत हुसैन रिजवी. एंड देन वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स ऑफ सज्जाद वॉज द फिल्म रुस्तम सोराब. रुस्तम सोराब का गाना अभी मैंने आपको जो सुनाया था, पहला गाना जो था ये कैसी अजब दास्तां. अब मैं दूसरा गाना लता जी का गाया हुआ ए दिलरुबा दिलरुबा. जब मैंने इनके बेटे से बात की, अब सज्जाद हुसैन की फैमिली के बारे में अगर बात करूं तो ही हैड 5 sons and 2 daughters. अब विकिपीडिया में देखोगे तो देव सेड 1 daughter, क्योंकि ये करेक्शन सब मैंने 3 महीने से इनको स्टडी किया. और सज्जाद हुसैन के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा जी, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको बुलाया गया है टू प्ले मैंडोलिन. ही इज सच अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन हिमसेल्फ एंड वेरी बिजी. दुनिया भर में उनको बुलाया जाता है. एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट हिज फादर मुस्तफ़ा यूसुफ नूर मोहम्मद नसीर अहमद और अब्दुल करीम. 5 बेटे और 2 बेटियाँ, मरियम और सायरा बेगम. अभी इन्होंने रुस्तम सोराब जो फिल्म की 1963, तब इनकी उम्र थी 46. एंड सुरैयाज गाना, लता का गाना, मैं अभी लता जी का सुनाऊंगा आपको. एंड बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर ही हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लिरिक राइटर डी एन मधोक. एंड दैट वाज फिल्म सैया इन 1951. दिलीप कुमार जी के साथ भीड़ गए क्योंकि संगीत कर रहे थे फिल्म संग दिल का. संग दिल का म्यूजिक करते करते जब दिलीप साहब ने कुछ सजेस्ट किया म्यूजिकली, इन्होंने कहा मैं आपके काम में दखल नहीं देता हूं, आप मेरे काम में दखल मत दीजिएगा. ही वॉज

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

ये गाना कंपोज किया सज्जाद जी ने। जी हाँ, सज्जाद हुसैन जिनकी ट्रिब्यूट मैंने की। अब सज्जाद हुसैन ने ये गाना जब कंपोज किया तो मदन मोहन जी को बड़ा प्यारा लगा ये गीत, और उन्होंने ये गाने को कॉपी किया, और ये गाने की कॉपी कुछ यूं जाती है। सेम मेलोडी।

0: ये गाना बाहुब उन्होंने लिया, गाना मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा। और एक फंक्शन में जब सज्जाद हुसैन ने मदन मोहन को देखा तो उन्होंने कहा, आजकल तो परछाइयां भी घूमने फिरने लग गई है। और मदन मोहन जी ने रिप्लाई दिया कि आई कुड नॉट फाइंड एनी बेटर म्यूजिक डायरेक्टर टू कॉपी। वहां पे सज्जाद जी चुप हो गए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: Hope you enjoyed the tribute, and those who didn't, sorry.

0: आज ट्रिब्यूट्स देखे जाए तो इतने सारे हो सकते हैं और हो सकते थे, क्योंकि हमारे मोतीलाल जी, डू यू रिमेम्बर मोतीलाल राजवंश, ही पास्ड अवे ऑन 17th of June 1965 एट द एज ऑफ 54। और सबसे पॉपुलर इनका गाना जिंदगी ख्वाब है, जो इन पे पिक्चराइज किया गया था, जागते रहो फिल्म, राज कपूर जी। और इतने खूबसूरत नौजवान, ही ऑल्सो मेड अ फिल्म एज वेल, और कितनी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी किया था। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड इनको मिला था फॉर देवदास 1955, एंड परख फिल्म में 1960 में इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था उस फिल्म के अंदर। एंड वी रिमेंबर हिम टुडे, उनको पूछा गया था अपने बारे में, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कहा, मैरिड 100 times, डाइड ऑलमोस्ट ट्वाइस, नेवर बॉर्न बट ऑलवेज ब्रॉट डाउन बाय अ पैराशूट। आगे कॉम्पिटिशन है, उसके बाद और भी बातें करेंगे। और वी आर ऑल्सो रिमेंबर डेजी ईरानी, जिनका बर्थडे है।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन।
0: ऑलराइट, आर यू रेडी फॉर कॉम्पिटिशन? नहीं सुनाई दे रहा, आर यू रेडी फॉर कॉम्पिटिशन? Okay, sunai diya. So here we go. Laika Radio Network has teamed up exclusively with Dharma Productions for the Gujarati film Jindagi Once More. Yes, starring Siddharth Randeria. सिद्धार्थ रांदेरिया जी कल फोन पे आए थे और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की थी हमारे साथ, और ही एंडेड कॉन्वर्सेशन विद एनी माने, विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड, जिंदगी वंस मोर। वी हैव अ पेयर ऑफ टिकट्स टू गिव अवे टू अ स्पेशल इनवाइट ओनली स्क्रीनिंग ऑफ जिंदगी वंस मोर। ये कहाँ पे है? एट द कोर्ट हाउस होटल, रिमेंबर The Courthouse Hotel near London's Oxford Street Station. And the screening takes place on Thursday, tomorrow at 6 p.m. Send the word Jindagi for you to win a pair of tickets. And winners, of course, need to collect the tickets from the venue on the night of the screening. And the tickets cannot be exchanged with any other screening or film. So we want Jindagi, the word Jindagi with your full name and telephone number. Good luck.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 126

0: मोतीलाल जिनको हमने याद किया आज, उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया। सैंडिशा इज हियर एंड राजपदन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। कल तक के लिए इजाजत।
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: You know, I fan shout at football matches.
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
4: दिल तो टूट पे किया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394।
6: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.

0: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio. Miss your favourite show on Lyca Radio Midlands? You can now listen back at lycaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to lycaradio.com and the Lyca Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

0: Striker Radio. 105 shows pura karya pachi, have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
1: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji.
0: Reena Shah ane Samir Shah sate hasiyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows. Bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B 07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सकना रे जो हस्बैंड जी
2: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे
3: अंकल तमे पहला थी आवाज छो
4: आवाज એટલે કેવા
2: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર
4: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે
2: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ
4: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in the

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: The sounds of love across the Midlands. The Love Sound. This is Leica Radio.